पहले सुचा भोए सुचे बैठा सुचे अगे रखियो उनको ना पिटियो जा सुचा होए के जे गया लगा पण सुलोक हथी जाए सुटिया किस एला।

अपनी खलकत दी इन्नी वड्याई नहीं कीती जिन्नी वड्याई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने की। मैं रहां ना इत्थों तक कहता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किसी ने नहीं किया मेरा रूप।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन नु पालना। पहला निर्धन नु पालना गुरु का सिख दसवंद कढ़े। सारे चाती पायो अगां अगां ज्यो प्रकरण आएगा। कोई माया का दसवंद नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन नु पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे। जेड़े बंदगी वाले महापुरश सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नु किहड़े ढंग नाल पालदे ने। उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असी किते पहुंच भी नहीं सकदे। उत्थे वह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण पहला निर्धन नु पालना गुरु का सिख दसवंद कढ़े। सारे झाती पायो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਵੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ

अत गरीब कोई विधवा ओदे बच्चे दी पढ़ाई दा साधन तुसी दसांद विच्चों बनदे हो ये भी गुरु नूं पहुंचदा आखो सतनाम किसे गुरुद्वारे लई दियो वो भी गुरु तरन तारण गए सी 101 अखंड पाठ संत रात दी हाजरी सी अजे 20 मिनट समा हैगा सी ते कमरे च लै गए कोई घड़ी चंगी आ गई तीन शरीरां दे दर्शन होए जिन्हां चों एक शरीर ने बाबा खड़क सिंह जी दे नाल 5-6 साल गृहस्थी च रहिंदिआं होइआं सेवा कीती ते चेहरे ते वैराग इन्ना दास ने नोट कीता कि ओदी अख दी पलक वी जिहड़ी ना किन्ना किन्ना चिर झपकदी नहीं सी जिहनूं कहिंदे ना शेर अख टिकाओ नाम जपण वाली रूह सी बंदगी वाली रूह सी वैराग सी नेत्रां च वी टिकाओ सी टिकाओ आम बंदे अंदर घबराहट हुंदी घबराहट कृपा हो जाए कि किनका टिक जाए किनका ही टिक जाए बाण पढ़ते ना समरी साहब किनका एक जिस जीव सावे ताकि मेहमा कि क्या करो किनका ही नाम होता टिक जाए अडोल अवस्था मिलती मैं की दसना चाहता कल की गल के परसों की एक बच्ची मैं 15 महीने की होगी 15 नहीं कोई 1.5 साल की होगी साडा मुंडा कहिंदा उन्हूं खिडाण डिया सी कहिंदा इहदियां अखां नूं वेखो इह किन्ना किन्ना चिर पलक झपकदी नहीं मैं वाकई वो बच्ची वाल वेख्या 1.5 साल की उम्र किन्ना किन्ना चिर ना ए शेर अख नाल मैं कि इह भी पिछले जन्म की कोई आखो सतनाम पौड़ी चढ़ी है

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभाई बन चुकिया है जे एक जन्म दा होवे सुभा तां बदल लईए कईयां जन्मां तों एही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना आद अंत जो राखन हार

मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। रब ते प्यारियां दी निशानी है जे घर विच दुख आ गया है ता परमेश्वर दी रजा समझ के पाना मिठा करके मनदे हन। जे परमेश्वर ने खुशियां भेज दित्तियां ता उना खुशियां विच अहंकार नहीं कर दे।

मन दृष्ट ध्यान धर दर्शन दृष्ट ध्यान धर गोरे मूरत होई दर्शन दृष्ट ध्यान धर गुरमूरत।

ज्ञान होया भगत सदना जीव के हुन मास विच ना छोड़ दिता एकाग्र चित होके प्रभु भक्ति विच लग गए ते मन विच इच्छा होई के जगन्नाथपुरी जाके प्रभु दे दीदार करिए यात्रा करके आइए। आप तुर पे रस्ते विच रात पै गई मन विच सोचिया भई चलो कितों पुरुषार्थ करके प्रसाद छक लेंदे हां जां शहर विच गए एक घर जाके बेनती कीती इत्थे एक मुटियार खड़ी सी जो बेनती करके अपने अंदर ले आई महाराज आओ इत्थे ही छक लो प्रसाद ते रात हुण कित्थे जाओगे रात भी इत्थे ही गुजार लो। बड़े प्यार दे नाल भोजन तैयार कीता भगत सदना जी जदों छकन लगे तां कोल बह के पखे दी सेवा कर रही है जिवें पत्नी अपने पति दी सेवा करदी है पर अंदर इस दे जहर भरिया होया सी। इस दी उम्र छुटेरी है आदमी इसका वडेरी उम्र का सी ते रोगी सी जिस करके इसका मन बेईमान हो गया। संत जी हुण किधर जाओगे इत्थे ही रात कट लो ना विशाई कर दिती। भगत सदना जी प्रभु सिमरन विच जुड़े हुए अज इत्थे आराम करन लगे तां अद्धी रात नूं हार शिंगार करके आ गई। कहन लगी आप आए हो तो हुण मेरी भी श्रद्धा पूरी करो। कामातुर होके हाव भाव करन लगी ते भगत सदना जी झट उठ के खड़े हो गए आख्या तू तो मेरी भैन है ते भैन नूं इस तरह नहीं करना चाहिए तू मेरी भैन दे बराबर है असी इस नरक विच नहीं पै सकते। ओ मन विच उसने सोचिया भाई शायद मेरे बीमार पति नूं वेख के डर गई ए डर गए हन मेरे बीमार पति नूं वेख के झट जाके अपने पति दा सिर वड दिता ते सिर लैके आई। कहन लगी संत जी ऐसे दा ही डर सी ना आ मैं मार दिता क्योंकि नित दा रोगी है इसने मरना ही सी और मैं तुहाडे नाल साधुआं वाले कपड़े पाके मैं तुहाडे नाल जिंदगी बितावांगी। भगत सदना जी जान गए कि पता नहीं किस जन्म दा पाप दा बदला ये सामने आ रहे है कलंकनीय सानू हथ ना लावी दुष्टनीय तेरा संसार ते आया त्रिग है जेरे अपने जीवन नू पवित्र नहीं रखदे उना दा त्रिग कार है संसार ते आउना उचारण करो श्री वाहिगुरु। बड़े तरले ले बड़िया मिन्नतां कीतियां पर भगत जी नू क्रोध आ गया चंडालनी है कल जुगने अगे ही मैं पापा दा भागी हां दर बदर ठोकरां खा रहा भगवान दे द्वार ते अपने मंदे कर्मां दी माफी लैण लई चलिया बख्शिश लैण लई चलिया। कहन लगी जे तू मेरी गल ना मनेगा तो फिर तू जा इथों भी नहीं सकदा। भगत जी झट बाहर निकलन लगे तां इसने चीक चिहाड़ा पा लिया वे लोग

को मैं लुटी गई, मैं मारी गई, मेरे पति नू कतल करके मेरा जन्म भ्रष्ट करना चाहता सी ए सन। ते हुण भजन लगा, लोग इकट्ठे हो गए महल्ले दे, फड़ लिया भगत जी रब दे रंग विच मस्त होए होए, भई वेखो निरंकार की करदा, ओदा सिमरन जो करदे हां ओदे बदले सानू की देंदा। पकड़ के लोगां ने हाकम दे हाथ विच दे दिता, ते उस हाकम ने एक नहीं सोची, दो नहीं सोची, कुछ नहीं सोचिया, कहन लगा इस नू दीवार दे विच चिन दियो। जां चिनन लगे तां होर भगत सदना दे मन विच एक ख्याल आया, भगवान नू मेणा मारन लगा, निरप कन्या के कारने एक पयो भेखदारी, कामारती सुहारती वांकी पैज सुवारी, एक निरप कन्या दे कारने एक तिरखान ने विष्णु दा रूप बनाया सी, पखंडी बनया सी, पूजा बनाईया लकड़ां दियां, ते तू उस लड़की दा प्यार वेख के उस त्रिखान दे अंदर आके वश के तू प्रत्यक्ष दर्शन दिते सन, वो तां भेख तारी सी, उदी रखिया कीती ते मेरी नहीं कर रहा, फिर भी जदों कुछ नहीं बनया तां फिर भगवान नू मेणा मारिया, भई तेरा नाम जप के भी जे कर्म नाश नहीं होने तां फिर तेरे नाम जपन दा की फायदा है। शेर दी शरण विच जाके भी जे गिदड़ा कोलों डरना है तां फिर वो शेर कादा होया, उचारण करो श्री वाहिगुरु। हुण दीवार चिनी जा रही है, त्यों त्यों कई जा रहे हैं, एक बूंद जल कारने चात्रक दुख पावे, एक स्वांति बूंद लई चात्रक कितना तड़पदा है, पर जे वो मर जावे प्यासा ते फिर उसनू चुक के सागर विच सुट दईए तां केड़ा फायदा है, उचारण करो श्री वाहिगुरु। एक बूंद जल कारने चात्रक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे, प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमाऊ, बूढ़ मुए नौका मिले कहो काहे चढ़ाऊ, जे डुब जावे मनुख नदी विच ते फिर बाद विच उनू बेड़ी दईए तां की फायदा है, ते जदों वेख्या ना हुण थोड़ी जी दीवार दो के इट्टां दगन गियां ते मुंह लुक जाएगा, ते हुण सारा सिमरन दा भजन दा जिहड़ा मन विच अहंकार आया सी ना वो सारा टुट गया। हे निरंकार मैं भुल गया, मैं तां गुनाहगार हां, मैं ये तैनूं मेणे मारन लग गया, मैं नहीं किश हो नहीं किश आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। जदों कहा ना मैं नहीं, क्योंकि जदों मैं आ गई ओ तो फिर हिसाब है, उचारण करो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज। कलेरां वालियां दे पास एक संत समागम होया, महापुरुषां दा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानियां दा इकट्ठ होया, ते फिर बाबा जी कहण लगे भाई सदने ने सिमरन कीता सी नाम जपया सी पर उसनू सजा क्यों मिली दसो। सारे महापुरख कहन लगे महाराज फिर इसका जवाब जे तुसी दियो तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि जानते सन भाई सारे संतां विचों श्रोमणी संत हन, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हन, जो प्रतख गुरु नानक नू रोज भोग लवाया करदे सन। महाराज आप कृपा करो सदने नू क्यों सजा मिली, तां बाबा नंद सिंह जी महाराज कहन लगे सदने नू तां सजा मिली जे आप बनया अकाल पुरख वाहिगुरु नू ईश्वर नू मेणा मारिया, भई निरप कन्या के कारने एक भयो भेखदारी कामारती सुवारती वांकी पैज सुवारी, मैं तां तेरा सिमरन करन वाला तू तां एक कामारती दी पैज सुवारी, ते जदों फिर अहंकार दूर हो गया जदों कहा कि मैं नहीं किछ हो नहीं किछ आए ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा, जदों कहा ना मैं नहीं
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾ ਦੀਵਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹਾਂ ਨਹੀਂ।

गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या

चले है पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना।

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिस दा शिंगार ए पागां वाला तख्त है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हां, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिआं नूं सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला सिक्का।

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुट्टिआ पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी। उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी। उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया। पहला सन्यासी बनिया उसका नाम नारायण गिरी पै गया। फिर बैरागी बनिया योग सिख्या ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दखण

आश्रम बना के रहन लग पे है। अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पे है। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बैठ

जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे, तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद, कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हू पलंग तू थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं। पलंग नू उल्टान दी कोशिश की थी, पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा न सके। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टान वास्ते, पलंग ना उल्टा सकया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

तू कौन है? ता माधो दास बैरागी चरना नु चुमदा होया कहन लगा, मैं तुहाडा बंदा गुरु जी, मैं तुहाडा बंदा, मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती, बड़ा ढूंढिया, बड़ा लभिया, अज तुसी मिले, मैनू शांति नसीब हुई, मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधुदास नू उठा के अपने कोल बिठाया, प्यार नाल किया, जानदे हुए भी पुछदे ने तू बैरागी क्यों बनिया। ता माधुदास ने अपनी कहानी सुनाई, एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, ओ मरी, ओ दे बच्चे भी तड़प तड़प

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पे ने जुल्म पै कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज

पर हुण बंदा सिंह बहादुर बना के अपना सिख बना के पंजाब वल तोरिया ते नाले उपदेश कीता, जहां तहां तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वो मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहती हूं। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशरथ प्रजापति दे महलों में पहुंचे जित

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, ओना योग साधना दे नाल अपने

अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्ना ने आग्या मंगी ता भगवान ने किया जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्ना ने सती दा अनादर किया। ता उसे वक्त उन्होंने दशक प्रजापति का सिर वढ़ के यज्ञ की अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी हुई परलो आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने महाभैरो नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया।

अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जालमा का नाश कर रहे हैं। उन अकलिया ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हों जुलम होंगे नहीं, वो शहर तबाह कर देंगा जिन्हों शहर मजलूमां नू जालम तंग कर दे नहीं। एक कहिंदा होया बंदा।

आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी फौजा दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया।

मकान ढा दिते, शहर नू ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान ओ भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती, अते जिस वक्त सरहंद नू फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका बजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहिबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले ले। और सत साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नू उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा।